Ana tripulare tõnu, edita sagale sõn saan. Kausik sunu, vanda ehe maan, kurtile kaale vasa lijakule kaale, tume hata kahu jood jahahu vaara, kahita taapavale roosu hamara. Suure samade kare nii kare hi, kahine janava hi aap, nitya maane rana paayedi, kaayare kare hi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रशंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उघरे पटल पर

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tarikatam tar